0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारू हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम अवन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

0: बधाई है, माता राम जन्म की बधाई है, बधाई है माता राम जन्म की बधाई है, बधाई है माता राम जन्म की बधाई है, बधाई है माता राम जन्म की बधाई है, बधाई है
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है,
2: राम जन्म की बधाई है बधाई है, राम जन्म की बधाई है।

है तुम आज किसी के हो जाओगे मुर्बान माँ अब न पिताओगे आओगे आओगे आओगे मुर्बान माँ अब न पिताओगे।

क्या तुम आज पिछित हो जाने मुझे मालूमा अब न सताओ रे आओ आओ रे आओ आओ रे मुझे मालूमा अब न सताओ

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था एक घटा।